जलसा फीजी रेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें। दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और मेरे साथ में आज पेनलिंग पे है साहिल और हमारे पास जो आज गेस्ट है साथ देने के लिए आ पहुंचे हैं ही इज नन अदर देन विवेक श्रीवास्तव फ्रॉम जनरेशन होम्स जो हमारे मेजर स्पॉन्सर है। चलो हम इस प्रोग्राम को आगे लेते हैं और आप सबको हैप्पी लॉन्ग वीकेंड कहते हैं क्योंकि मंडे को ज्यादा करके लोगों के आज पब्लिक हॉलीडे रहेगा बीइंग किंग से बेहतर है। और काफी खेल कूद के भी समाचार है। वी हैड अ फ्यू गेम्स जो यहाँ पे हुआ था बिटवीन क्रुसेडर्स और फिर ड्रुआ एंड सेवंस एंड सो मेनी थिंग्स क्रिकेट वगैरह, लेकिन वील सी हाउ मच टाइम वी हैव क्योंकि हमारे पास साहिल होते फुल न्यूज एंड वील सी इफ यू कैन कैच अप ऑन दैट एज वेल। जी हाँ, और वेल अदरवाइज इट्स गेटिंग अ बिट कोल्ड इन क्राइस्टचर्च बट क्राइस्टचर्च तो क्राइस्टचर्च है बट आई थिंक दिन में बहुत बुरा नहीं था, इट वॉज क्वाइट अच्छा था, अच्छा मौसम मिला था। Now, I'm sure you are enjoying yourself. और आज हमारा जो प्रोग्राम रहेगा we'll just play a song आपके लिए because हम जब अपना इंटरव्यू शुरू कर देते हैं then हमारे पास टाइम बहुत नहीं रहता है सॉन्ग्स के लिए, इसलिए we'll just play a song first and then हम बात करेंगे विवेक जी से फ्रॉम जनरेशन हो। और अभी उनका जो जल्दी जो हम अपने सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट वगैरह देखा होगा then news जो स्कीम हम कह सकते हैं अबाउट ट्रेडिंग, तो we're quite keen, तो हमने विवेक से बोला if he can come and explain to us how it actually works. I know many people would be interested. और साथ साथ में we'll just ask him कि अभी हाल में क्या चल रहा है, what's in the market doing और किस तरह के inquiries and what kind of customers they are having at the moment, वो सब जानकारी हम उससे लेंगे। I know many people अभी भी in काफ़ी sections जो भी develop हो रहे हैं and I know many people would be looking into it, या construction or buying, so I think we'll gather as much information as we possibly can from Vivek. और उसके बाद में after we finish of the interview then hamare paas ek interview hai play karne ke liye and that's the interview I had with MP Vanessa Winning aur this is to do Jalsa's new initiative which is KYC yani ki know your candidate. Ji haan, ye election campaign nahi hai but it is hamara ek initiative hai with our knowledge partner Crashers Bengali community aur Prince Media aur for their contribution thank you, but we are bringing this particular segment to you so that you become aware because mujhe maloom hai jab election aati hai then people actually hesitate because they don't really know their candidates. So this is हमारे छोटे से कोशिश है for you to be aware and hopefully you make your decision based on what you can learn from those interviews. तो वही हमारा कोशिश रहेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं साहिल, so we'll play the song and then हम विवेक जी से बात करेंगे।

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों और साथियों, आपको हम फिर से स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव प्रोग्राम में. मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश. और जैसे मैंने शुरू में बोला था कि साहिल इज गोइंग टू हेल्प अस विद पेनलिंग. और जो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फेसबुक में, उनको भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं शिवनील को जो आज हमारे जो वीडियो संभाल रहा है. और हमारे जो गेस्ट है उसको हम स्वागत करते हैं, विवेक श्रीवास्तव, नॉट अ स्ट्रेंजर, वो हमारे जो साथ साथ काफ़ी सालों से है. थैंक यू सो मच विवेक जी आपके सपोर्ट के लिए. और जनरेशन होम्स ऑफकोर्स वुड लाइक टू थैंक देम as well. और जनरेशन होम इज अ ब्रांड हम कह सकते हैं इन स्पेशली हमारे जो क्राइसिस में अगर देखा जाए या इन न्यूजीलैंड में अगर बोल सकते हो, देन जनरेशन होम इज अ ब्रांड. और ये जो कंपनी काफ़ी सालों से है, लाइक सिंस 1997 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और ये हमें जो सेवा कर रही है कम्युनिटी को, और देर आई थिंक वन ऑफ आई थिंक टॉप टीआर में अकाउंट हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट्स लाइक हाउस बिल्डिंग में. तो चलो हम विवेक जी आपको स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं ठंड से. तो आज काफी ठंड है बाहर,
1: बहुत ठंड है. सबसे पहले तो थैंक यू विनेश और जलसा फिजी रेडियो जो काफी पॉपुलर होते जा रहा है और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो थैंक यू हमको बुलाने के लिए यहाँ पे. और ठंड तो क्राइस्टचर्च में पीक ऑफ द ठंड है अभी, और ऐसा प्रेडिक्ट है कि भाई नेक्स्ट फ्यू वीक्स में काफी ठंड होने वाला है.
0: जी हाँ, वी आर इन विंटर. जय होता ना, हम समय एंजॉय करते करते करते फिर भूल जाते हैं कि यू नो विंटर भी आने वाला
1: है. बिल्कुल,
0: देन सडनली ये हिट करना शुरू
1: का भी अलग मजा है.
0: जी हाँ, वो तो है. तो और जो लोग अभी भी घर वो फायर प्लेस जिसके घर पे था, श्योर दे विल बी एंजॉयिंग देमसेल्फ. सो चाय लेकर बैठना और नो फायर को देखना, उसका अलग मजा.
1: समोसा खाना.
0: जी हाँ बिल्कुल. और वंस अगेन नो थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम एंड कमिंग ओवर एंड ऑफ कोर्स सपोर्टिंग अस, बिकॉज आप के जो सपोर्ट है उसको द्वारा ये हम रेडियो प्रोग्राम कर पाते हैं और कम्युनिटी का जो भी कुछ इवेंट्स है उसे भी हम प्रमोट कर पा रहे हैं. और अभी जो जल

0: जलसा टैलेंट सीरीज चल रहा है. वी जस्ट फिनिश्ड सीजन 5 तो चल ही रहा, बट एपिसोड 4 हम कल शुक्रवार को हमने फिनिश किया. वी मिस्ड यू, आई नो यू आर नॉट हियर. और जो 4 तक पहुंच गए एंड 5th रहेगा इन जून. तो थैंक यू सो मच. और एट द सेम टाइम जिसे हमने शुरू में भी मेंशन किया था, जो लोग हमें फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे थे और जो अभी फेसबुक पे, आपको बता देते कि इस प्रोग्राम में इसे फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, बट वी आर गोइंग टू प्ले द इंटरव्यू दैट वी हैड विद एमपी वेनेसा विनिंग. और इट्स केवाईसी यानी कि नो योर कैंडिडेट प्रोग्राम, जो हमारा एक इनिशिएटिव, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द सपोर्ट दैट वी रिसीव फ्रॉम बिजनेसेस. और जनरेशन होम इज ऑफ कोर्स आवर मेजर स्पॉन्सर हेल्पिंग अस आउट. तो चलो विवेक, हमारे पास एज यूजुअल जैसे मैं हर वक्त बोलता समय कम ही रहता है, एंड वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट. जब घर की बात आती है और जिस तरह आप सेक्शन से शुरू करते हैं, यानी कि एकदम स्टेज वन से शुरू करते हैं, जीरो ग्राउंड से लेते हो फिर घर बना कर देते हो, आई नो लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट विद व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट. क्या हो रहा है आपका सेक्शन वगैरह कहाँ पे?
1: देखिए हम लोग तो पूरे कैंटरबरी में बनाते हैं, और ये रेंगियोरा, काइपोई, रॉलस्टन, लीस्टन, डारफील्ड, आपका हॉल्सवेल, सारा बहुत सारे जगह पे हम लोग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. और डिपेंडिंग अपॉन सेक्शंस, ही सेक्शंस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो डेवलपर लोग सेक्शंस निकालते हैं और हम लोग सेक्शंस को होल्ड करते हैं, या तो क्लाइंट के पास भी सेक्शंस रहता है तो उनको वो बोलते हैं कि मेरे पास ये सेक्शन है इसके ऊपर, तो प्लान बना के देना, उनको प्राइस देना. तो जैसा कि आपने बोला कि स्टार्ट से लेके फिनिश करते हैं हम लोग, और फिनिश के बाद भी हम लोग 2 साल का घर देने के बाद 2 साल का वारंटी रहता है कि 2 साल तक आपको अगर कुछ घर का प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो प्रॉब्लम वारंटी के अंदर है तो हम लोग उसको फिक्स करते हैं. तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं. चैलेंजेस भी है लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत खुशी भी लगता है कि जब घर बन के तैयार होता है, तो जैसे एक बच्चे को रेज करते हैं आदमी, तो बच्चे जब बड़ा हो जाते हैं तो भाई नौकरी करने लगता है, तो वो देख के कितना अच्छा लगता है. वैसे ही होता है जब घर बन के तैयार होता है, तो वो जो फीलिंग होता है, जो चेहरे पे स्माइल होता है क्लाइंट्स के और जो ओनर्स के, बच्चे लोग के ऊपर भी, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है. वो उस टाइम बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि बहुत लोग खुश हैं अंदर से. और घर तो सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है.
0: जी नो डेफिनेटली. और काफ़ी जुड़े होते हैं ना लोग अपने घर से
1: जी
0: ना, और स्पेशली जब बनाते हैं, अगर आप बना ऑलरेडी बिल्ड अगर घर ले रहे हो तो डिफरेंट बात होती है, जस्ट बिकॉज यू गो एंड चूज, एंड जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ले लिया, बट वेन यू आर बिल्डिंग तो ऐसा आपको लग रहा है कि आप खुद उसको तराश रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, प्लेन आपके साथ में डिसाइड कर रहे हो, फिर एवरीथिंग छोटे से छोटे चीज़ कलर
1: कस्टमाइज.
0: जी हाँ एग्जैक्टली. तो काफ़ी फिर जेन ही रहता है ना, देन यू वेट, यू आर एंशियसली अवॉइड कर रहे हो, फिर जाकर ईच डेवलपमेंट आप देख रहे हो, तो आई नो कि वो क्या फीलिंग, क्या इमोशंस जुड़ी रहती है उसके साथ साथ में. बट गोइंग ऑन द अदर साइड, अगर हम उसके ऑपोजिट एंगल से देखें, यू नो व्हाट अबाउट फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज आई नो आप क्लाइंट के साथ में हो एंड यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ प्लेन्स, हाउ डू हैंडल द फ्रस्ट्रेशन अगर आपको लग रहा है कि आप एक जगह स्टक हो रहे हो एंड प्लेन अग्री नहीं हो रहा है, एंड हाउ डू एंड यू आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड?
1: होता है, ऐसा बहुत बारी हुआ है. और हम लोग इसमें ये कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ जो घर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ना, धूप, जो सन होता है ना, तो वो सन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. तो हम लोग कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन कभी हुआ है तो उसमें हम लोग ये भी बोलते हैं कि तुम आप लोग ऐसा करो कि एक कोई रियल एस्टेट वाले से बात करो कि अगर ये घर का प्लान है, अगर घर को हम बेचना चाहते हैं इस प्लान के ऊपर ना, तो ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कैसे होगा, क्योंकि रियल एस्टेट वाले लोग को भी काफ़ी नॉलेज होता है ना कि भाई कैसा सन का ओरिएंटेशन है और उस ओरिएंटेशन में घर का सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरे दिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो कभी कभी थर्ड पार्टी लोग, थर्ड पर्सन लोग भी एडवाइस करते हैं, वो लोग तो एक न्यूट्रल पर्सन एडवाइस करते हैं, तो वो लोग को बिलीव कर देते हैं कि भाई कि नहीं ये ठीक बोल रहे हैं. एक दो लोग का ओपिनियन अगर आ जाता है ना, तो दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन मेकिंग अ डिसीजन, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन. यू नो बडी नोज दैट वेयर आई एम मेकिंग अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन. हाउएवर इफ समबडी एल्स पुशेस इट, समबडी एल्स उसको डिक्टो कर देते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है. तो होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो उनकी ज़रूरत है, जो उनका रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फुलफिल करें, और जो सन का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें, ताकि कल को अगर घर बेचे, क्योंकि ये जनरेशन होम का भी प्राइड है ना कि हु इज बिल्ड दिस हाउस. भाई घर बिक नहीं रहा तो भाई जनरेशन होम ऐसा घर बना के दिया है, तो वी डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन कि भाई वो बाद में नाम खराब हो. क्योंकि सिर्फ घर बनाना ही नहीं है हम लोग को, उससे हम लोग को उनसे हम लोग रेफरल लेना है, रिकमेंडेशन लेना है, रिव्यू लेना है. तो देर आर लॉट ऑफ स्टेजेस, लॉट ऑफ स्टेप्स, हम लोग को साथ कनेक्ट होना है उनको. तो हम लोग हर कुछ को, पॉइंट्स को क्लियर करके टिक करके सारा बॉक्सेस टिक करके देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेज जो

0: planning sign off hota hai.
1: Yeah, I agree with you, Vivek, and that's what I've noticed with you, especially or jitne bhi staff se bhi humne mile hai from Generation Homes Ahead, the same kind of vibe and similar attitude jisse bhi hum milte hain. Aur ye achhi baat hai kyunki kabhi kabhi aisa bhi hota hai ki log jaate hain as a customer and you want something aur jo udhar ka hota hai company they kar dete hain aapka kaam, but then aage chal ke to musibat hoti hai and then you go back and say, you know, why didn't you tell me? To bolta hai ye hamara kaam nahi tha na, aapne jo bola daam diya humne de diya. But it's a good thing that actually you go through that education process as well, aap inform kar dete ho, and because you are the professional, you obviously in a better position to know such things, and thank you for doing that. Achhi baat hai. Aur at the same time kabhi ye bhi apne, like, do you come across this as well ki customer kuch mang raha hai ki building hame yahan se banana hai, and then you have to explain to them ki nahi ye nahi ho sakta because of the requirements from the council or something.
0: To hum log kya karte hain na ki jo mera architect hai na unke sath hi meeting karwa dete hain aur pehle architect ko bata dete hain ki bhai aisa sa situation hai, tum sara guidelines sab dekh lo, kyunki yahan pe do guideline hota hai, ek to developer jo land ka guideline hota hai, ek hota hai jo council ka guideline hota hai, to dono ko combine karke na tab iska outcome nikalta hai. To wo hum log pehle hi baat karte hain, batate hain, samjhate hain. और कोशिश हम लोग यही करते हैं कि जब प्लान प्रपोज करें ना काउंसिल को, तो उसको पुश बैक रिजेक्ट ना करें, क्योंकि अगर आप प्लान को प्रेजेंट करते हैं और प्लान को पुश बैक मिलता है तो वो टाइम डिले होते रहता है ना, और टाइम डिले, और हम लोग जैसा आपको पता है 18 वीक्स में हम लोग घर बना के देते हैं फाउंडेशन से, जो कि क्राइसिस में बहुत कम बिल्डिंग कंपनी है जो 18 वीक में घर बना के दे देता है. हम लोग स्टार्ट टू फिनिश कर देते हैं 18 वीक्स में फाउंडेशन से. तो वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वो सब चीज़ करके और उसको सामने प्रेजेंट करें, सो दैट कि काउंसिल, कभी रेयरली ऐसा हुआ है कि हम लोग को भी समझ में नहीं आया और हम लोग भी पुश बैक मिला है. हुआ है ऐसा, ऐसा नहीं कि हम लोग भी परफेक्ट हैं, वैसा नहीं है. वी ऑल्सो गेट इन द सिचुएशन कि ऐसा हुआ है हम लोग के साथ कि नोइंगली अननोइंगली हम लोग भी ऐसा सिचुएशन में पड़े हैं एक दो, बट 98% हम लोग थ्रू हो जाते हैं टाइमलाइन के हिसाब से.
1: जी हाँ, और एक चीज़ वही होती है ना लाइफ में, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, एक चीज़ हमें सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए. एंड यू हैव लाइक सेमिनार्स वगैरह होते होंगे टू एजुकेट योरसेल्फ सो दैट वी नो, और फिर लेजिस्लेशन भी चेंज होते रहता है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप अप टू इट. वैसे तो जैसे मैंने शुरू में बोल दिया था कि एक तो जनरेशन होम इज अ ब्रांड, जैसे आपने बोला है कि यू टेक नो प्राइड 18 वीक्स में डिलीवर करना, फिर आपका दूसरा जो नो जो लोगो या आपका जो स्टेटमेंट होता है फिक्स प्राइस, तो हमने काफ़ी बार सुना है, सो वी नो दैट. और द सेम टाइम हमने ये भी मेंशन किया था कि वेन अगर हम विवेक से घर के विषय में बात करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे पास वक्त नहीं रहेगा. विल जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट. विल क्विकली जंप टू व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे, जो हमारा थीम रहेगा विच इज ट्रेडिंग. आप हमें एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज हमें मालूम है, हम गाड़ी में देखते हैं कि आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है देन यू टेक यू टू द डीलर आपको एक सर्टेन अमाउंट देता है एंड देन यू वॉक अवे विद अ न्यू कार.
0: जी बिल्कुल सही सुना आपने. अभी लास्ट मंथ में ही हम लोग ये लॉन्च किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का इंक्वायरीज आ रहा था हम लोग के पास कि अब अभी हम लोग घर को मूव करना चाहते हैं, घर वी आर इन अ सिचुएशन वी वांट टू सेल द हाउस. तो ये करके हम लोग पिछले 6 मंथ से रिसर्च कर रहे थे कि भाई इस चीज़ को कैसे लॉन्च किया जाए सो दैट को क्लाइंट को भी फायदा हो, कंपनी को भी फायदा हो, और एक स्ट्रेस फ्री ये जर्नी रहे लोगों का. क्योंकि घर बेचना यहाँ पे भी सबसे हाई, घर बेचना और घर चेंज करना नंबर 10 है यहाँ पे. आप जैसे जितना भी स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस का नंबर 10th लास्ट है यही है. मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहुत छोटे छोटे स्ट्रेसेस है, बट ये सबसे एक्सट्रीम स्ट्रेस है कि घर को बेच के एक दूसरे घर में जाना. तो बहुत सारा इंक्वायरी होने के बाद हम लोग यही सोचे कि भाई इसको कैसे हम लोग ऐसे डिजाइन करें सो दैट कि लोगों को स्ट्रेस फ्री ये जर्नी हो जाए. तो बिल्कुल आपने सही बोला कि जब हम लोग कोई ट्रेडिंग कर, जैसे कोई गाड़ी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो फिर उसके बदले आप नया गाड़ी लेते हैं. तो उसी तरह अगर आप, अगर घर हम लोग को दे रहे हैं ना, तो आपको एक नया घर हम लोग बना के देंगे आपके अनुसार, जो आपको चाहिए जिस जगह पे चाहिए. ऐसा नहीं कि हम लोग बना बनाया घर दे रहे हैं नया, हम लोग उस लैंड को एक्वायर करेंगे और लैंड के ऊपर आपके लिए आपके अनुसार 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, होम एंड इनकम कुछ भी बना के आपको हम देंगे. तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग घर को अपग्रेड करना चाहते हैं. अपग्रेड इन द सेंस, जिनका सिचुएशन आज से 5 साल पहले कुछ और था, अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि फैमिली मेंबर बढ़ गया है, तो उसमें उनको रूम्स ज़्यादा चाहिए, तो 4 बेडरूम का घर चाहिए, तो उनके लिए वो जो 3 बेडरूम का घर है वो अब ज़रूरत नहीं है उनको. और वो सोच रहे कि अगर बेचेंगे तो फिर अभी बहुत सारा प्रोसेस है बेचने का, ओपन होम करना होगा, लिस्ट करना होगा, और उस समय आपको घर खाली करके घर को पूरा सजाना पड़ेगा, जो स्टेजिंग जिसको बोलते हैं. तो वो सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना हम लोग सोचे कि नहीं, सारा स्ट्रेस हम लोग ले लेंगे और हम लोग उस घर को बेचेंगे

0: सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर में आप रह सकते हैं जब तक आपका नया घर ना बन जाए। तो ऐसा नहीं कि आप जब एक बार कमिट कर देते हैं नया बनाने में, और जो जो आपका इक्विटी है वही इक्विटी आपका डिपॉजिट यूज हो जाएगा। तो जितना भी चीज़ है ये बैंकिंग प्रोसेस के हिसाब से, उसमें ये भी है कि आपको वैल्यूएशन होता है, सारा प्रोसेस जो होता है ना वो सारा प्रोसेसेस को टिक करना पड़ता है, एंड देन यू चूज वेयर यू वांट टू गो। और एक बार वहाँ पे जब वो पेपर साइन हो जाता है ना, देन यू वेट, वो घर जब बन जाता है तो डे ऑफ द सेटलमेंट उसी दिन आपका वो घर जो पुराना घर है वो हम लोग ले लेंगे, और आपका नया घर का जो भी अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो पे कीजिएगा और हम आपको पुराने घर का पैसा दे देंगे। तो मतलब ये जो एक क्या बोलते हैं, एक हिंदी में जो बोल रहे हैं ना कि बहुत ही ये सिंपल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, ऐसे इसका टेक्निकल लैंग्वेज सब बहुत सारा चीज़ है, और टेक्निकल लैंग्वेज में है कि भाई आपका इसका हाउस का वैल्यूएशन करवाइएगा, इसका जो काउंसिल का है सारा कुछ, वो प्रोसेस जो होता है ना वो है मेरे पास, इसका सारा गाइडलाइन है, और किसी को भी ज़रूरत होगा तो फिर हैप्पी टू शेयर विद देम। और ये लॉन्च के बाद ना आप बिलीव नहीं कीजिएगा, पूरे न्यूजीलैंड में ना हम लोग के पास एटलीस्ट 400 to 500 इंक्वायरीज आए हैं।
1: वाह, 400 to 500 इज अ बिग नंबर।
0: हाँ, सिर्फ क्राइस्टचर्च का 400 to 500 मतलब पूरे ऑल ओवर, क्योंकि ये पूरे हर जगह लॉन्च हुआ है, तो ऑकलैंड और हर जगह बहुत सारे जगह, तो काफी इंक्वायरीज और काफी लोग एक्साइटेड भी हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज का स्टेप्स है, और जिस जहां से हम लोग को फंडिंग लेना पड़ता है, स्क्विरल है तो उनके थ्रू हम लोग को जाना पड़ता है, और वो वैल्यूएशन जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है वो सब देखना पड़ता है, उसके बाद कितना इक्विटी है घर के अंदर उसको सारा मेजरमेंट करके ना एनालाइज करके फिर हम लोग को एक फिगर ला के देना पड़ता है क्लाइंट्स लोग को। तो ऑब्वियसली हम लोग अगर कोई चीज ले रहे हैं और आपका स्ट्रेस भी ले रहे हैं और हम लोग खुद से वर्किंग कर रहे हैं तो दैट कम्स विथ अ मनी, तो वो थोड़ा आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, सेम टू सेम जो मार्केट रेट है वो नहीं मिलेगा। हाँ, आपको हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल के आपको प्रपोज करेंगे कि ये वैल्यू हम देंगे आपको, और आपको ये भी एक फायदा होगा कि आप उस टाइम तक घर पे रह सकते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल, देयर इज अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्वड रहता है ऑब्वियसली। और अभी हम आपने जो शुरू में बात किया था स्ट्रेस की, तो सेल्स मैनेजर का स्ट्रेस लेवल कहाँ पे काउंट, कहाँ पे
0: स्ट्रेस लेवल?
1: जी, बिकॉज 400 to 500 इंक्वायरीज, और फिर उसके बाद में अभी जो आपने हमें बताया, आई एम श्योर जो लोग अभी सुनेंगे दे माइट हैव मोर क्वेश्चंस, वो लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या यू नो हाउ द प्रोसेस वर्क्स, बिकॉज मुझे मालूम है काफ़ी लोगों का घर होता है ऑब्वियसली, and then they want to buy, build a new one because they've been in that home for certain years, and jaise aapne bola many reasons hota hai and they want to upgrade, aur abhi to sections bhi develop ho rahe hain, and then hum social media mein bhi kafi hota hai and we look at this new flashy homes, to hum bhi sochte hain chalo hum bhi kyun na naye ghar mein rahe, aur and there are many reasons people choose to do that, aur obviously that could be one option, trade in option, sounds nice, jaise gaadi ki baat hoti hai na to aapko bechna nahi padta hai, trade me and then deal nahi karna padta with buyers and no wo bhi ek
0: हाँ, और एक बात हम और ऐड करना चाहेंगे, जैसे आज हम बात कर रहे हैं किसी से ना तो वो वैल्यू निकाले हम लोग है ना, और वो जो लास्ट जो जब उनका सेल होता है ना वो तो उस पीरियड में आठ नौ महीना लग जाता है, सात महीने में कौन सा मार्केट है, लेकिन हम कमिटमेंट आज कर दिए हैं, तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ना, और वो फैक्टर हम लोग के लिए थोड़ा रिस्की भी है, क्लाइंट के लिए भी रिस्की है, हो सकता है कि ये मार्केट थोड़ा बूम कर जाए तो थोड़ा लॉस ना हो जाए, लेकिन क्लाइंट को ये मतलब ये समझ में आना ओनर को ना कि भाई चलो वो पैसा मेरे वो कमिटमेंट है, वो मेरे पास पैसा आएगा ही, और बैंक भी देखता है कि नहीं ये इनके पास वो पैसा आएगा, तो बैंक को भी लेंडिंग में कंडीशनल लेंडिंग मिलता है उनको।
1: जी बिल्कुल, आई मीन दैट समथिंग गैम्बल की तरह होता है ना, यू ऑब्वियसली हैव टू टेक द रिस्क, जिस तरह में फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात होती है,
0: बिल्कुल
1: व्हेन यू स्टार्ट फिक्सिंग दैट यू टेक अ रिस्क, सभी में रिस्क होता है, और हमें नहीं पता है कि क्या नेक्स्ट होने वाला है, आई मीन इंटरेस्ट जब हम सोचते हैं राइज होगा तो फॉल होने शुरू कर देते हैं, समटाइम्स मार्केट कैन क्रैश, तो कुछ भी हो सकता है, बट इट इज काइंड ऑफ अ गैम्बल। लेकिन एज ए मेंशन एलिया कि काफ़ी लोग हैं इनकी और भी जानकारी चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ न्यू पैकेज आपने जो अनाउंस किया है, एंड मैंने जब सुना देन डेफिनेटली मैंने बोला चलो आप रेडियो पे आना, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड पीपल को अगर हु नोज किसको ये अच्छा लगे आइडिया, एंड आई वांट देम टू टेक एडवांटेज इफ इट सूट्स देम, बट ऑब्वियसली यू हैव टू मेक अ डिसीजन आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस। और यहाँ पे जब आप बोलते हो कि सेटलमेंट ही देन, जब सेटलमेंट होगा दैट्स व्हेन दे मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग होम, तो उसी वक्त दैट्स व्हेन द मनी थिंग है, इससे पहले उनको लाइक पेन की

0: की तरह चलता है ना?
1: हाँ, ये बिल्कुल टर्नकी है, ये टोटल टर्नकी है, और ये जैसे टर्नकी में 10% डिपॉजिट होता है, तो उनके घर का जो इक्विटी है ना, वो इक्विटी ही हम लोग का डिपॉजिट होगा। तो मनी का ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को ये देखना पड़ता है कि कितना इक्विटी है उस घर के अंदर। अगर किसी के पास 5%, 7%, 10% इक्विटी है तो शायद मुश्किल होगा डील देना, लेकिन किसी के पास ज्यादा इक्विटी है ना, दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर अस। तो उनका भी रिस्क कम होता है, हम लोग का भी रिस्क कम होता है। तो जिस दिन वो सेटलमेंट अगर होगा, जिस दिन होता है ना, उस दिन बैंक के ही थ्रू सारा पेपर्स वर्क करता है, लॉयर के थ्रू ही होता है सारा कुछ, ट्रांजेक्शंस इन एंड आउट।
0: जी बिल्कुल। चलो हम घड़ी की तरफ देखते हैं, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम, एंड आई नो आपको भी काफ़ी जगह जाना पड़ता है, एंड बीइंग अ लॉन्ग वीकेंड एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली पर्सन, और हम भी आपका सोशल लाइफ भी देख लेते हैं कभी कभार, तो आई नो यू कैन यू माइट हैव सम पार्टीज टू गो टू, हु नोस टुनाइट। तो चलो बताइए आज ओनिया आपका क्या प्लान, आप यहाँ से क्या कहाँ जाने वाले हो?
1: अभी तो हम घर जाएंगे और शायद अपनी वाइफ को लेके कहीं डिनर पे ले जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से थे नहीं ऑकलैंड में, क्राइस्टचर्च में, तो बस अब वीकेंड सोचे उसके साथ, वाइफ के साथ मनाने के लिए।
0: जी हाँ, और एनी पर्टिकुलर व्यूज ऑन द करंट जो बजट रिलीज हुआ है?
1: हाँ, अभी तो हम कल मिस कर गए थे सारा कुछ। हाँ, तो अभी सब रिकैप करेंगे, जाके देखेंगे, क्योंकि 2 दिन काफी हेक्टिक रहता है ना, जाना आना हम लोग का ना, सुबह सुबह जाना, फिर वहां पर लेट नाइट, तो जिस दिन बजट था उसी दिन हम लोग का ये था।
0: जी हाँ, बट आई नो इट माइट हैव एन इफेक्ट ऑन लाइक बिल्डिंग सिचुएशन में भी, एंड देन यू माइट बी इंटरेस्टेड ना, हो जाता है तालुकात लगते हैं व्हेन इट स्पेशली टू डू विद द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, तो हमें देखना पड़ता है कि हाउ इट अफेक्ट्स। सो नो वरीज विवेक, विल लेट यू गो एंड देन फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में या तो फिर कहीं और पे, एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग दिस न्यूज, एंड मे बी वी कैन डू अ कैच अप एट अ लेटर टाइम एंड सी हाउ द ट्रेडिंग इज प्रोग्रेसिंग, बिकॉज आई नो इंक्वायरीज तो आने ही वाली है, एंड इफ देयर इज मोर क्वेश्चंस देन वी माइट कैच अप अगेन, बट आई नो जनरेशन keeps on bringing different packages, तो ऐसा कुछ रहेगा देन विल कैच अप विद यू अगेन।
1: थैंक यू विनेश।
0: जी हाँ, थैंक यू सो मच। ये थे विवेक श्रीवास्तव फ्रॉम जनरेशन होम्स। अब हम ये फेसबुक लाइव यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, शुभरात्रि, और हम कंटिन्यू करते हैं फ्रीक्वेंसी, एंड साहिल माइट वांट टू प्ले अ सॉन्ग, एंड देन उसके बाद में हम सुनेंगे जो इंटरव्यू हमने ली थी विद एमपी विनेसा विनिंग।